हमारा ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में सदाए तुर्किया की उर्दू सर्विस से पेश किया जा रहा था। अब अपने मेजबान इमरान ओपल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।

अस्सलाम वालेकुम सामिनों, सदाए तुर्किया से मुखातिब हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 3 अक्टूबर प्रोस 27 वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक सुपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामने में आप हमारी नशरियात को शॉर्टवेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज के अलावा तुर्कसात 3A ईस्ट और 4A वेस्ट समेत हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। सामने आज हमारे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें होंगी, इसके बाद सिलसिला प्रोग्राम देने वाले हाथ की कहानी और फीचर पेश किए जाएंगे। हमारे प्रोग्राम हस्बे मामूल 1 घंटे तक जारी रहेगा। आज आपके मेजबान हैं इमरान ओबर।

ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। सियोल की फौज का कहना है कि शुमाली कोरिया ने कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। ये ईरान के एक दिन बाद आया जब प्योंगयांग ने जनूबी कोरिया को काबिल नफरत करार दिया था, क्योंकि जनूबी कोरिया ने गैर फौजी जोन में एक धमाके पर माफी का मुतालबा किया था जिसमें इसके 3 फौजी जख्मी हुए थे। सियोल के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने हफ्ते को कहा, हमारी फौज ने शुमाली कोरिया के वनसान इलाके से मशरकी समंदर, जिसे बहरे जापान भी कहा जाता है, कि जान एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने का तयन किया है। प्योंगयांग ने गुज़िश्ता माह गैर अस्करी जोन के अंदर होने वाली बारूदी सुरंग के धमाके में मुलव्वस होने से इनकार किया है। DMZ वो भारी बारूदी सुरंगों वाली हिफाजती पट्टी है जो 1953 की जंगबंदी के बाद दोनों कोरियाई ममलकतों को जुदा करती है। सियोल अमरीका की क्यादत में अकवामतदा की कमांड ने कहा, धमाका सरहद के जुनूबी हिस्से पर नवस शुमाली कोरिया के बारूदी सुरंगों की वजह से हुआ था। जुनूबी कोरिया की फौज ने इस हफ्ते के अवायल में शुमाली कोरिया से सरकारी माफी का मुतालबा भी किया। एक दिन बाद जुनूबी कोरिया के अम पसंद सदर ली जे म्यूंग ने प्योंगयांग से मुजाकरा की तरफ लौटने की अपील भी की। शुमाली कोरिया के रहनुमा के हमशीरा किम यू जोंग ने जुम्मे को सियोल को काबिल नफरत करार दिया और एक बार फिर धमाकों में प्योंगयांग के मुलव्वस होने से इनकार किया। TRT के मुआसराती शराकत दार होने के साथ वजारत सनत और टेक्नोलॉजी और T3 फाउंडेशन के जरिए तमाम मुनाकिदा टेक्नो फेस्ट

न्यूरफा गैप हवाई अड्डे पर अपने जायरीन की मेजबानी जारी रखे हुए है। ईवान ने सदर दिफाई सनती इदारे के सरबराह हालुक गुरगुन ने मेले के सिलसिले में एसटीएम की इंतजामकारी में होने वाले वर्ल्ड ड्रोन कप में शिरकत की। गुरगुन ने वन के मकाम पर एफपीवी चश्मा लगाकर पायलट के नुक्ता नजर से परवाज का तजिया किया। परवाज के तजुर्बे के बाद गुरगुन टेक्नोफेस्ट के रोबोलीक हिस्से में गए, जहां उन्होंने नौजवानों के अपने डिजाइन करता रोबोट्स का करीब से जायजा लिया। उन्हें स्टॉल्स का दौरा किया और शिरकत करने वाली टीमों से रोबोट्स की तरक्याती कार्रवाई के बारे में मालूमात भी हासिल की। एसएसबी के तौर पर हम नौजवानों की शाना पशाना है। अपने दौरे के बारे में सोशल मीडिया पर बयान देते हुए गुरगुन ने कहा कि अपने रोबोट्स ड्रोन्स के साथ मुस्तकबिल की जान पड़ते हुए हमारे नौजवान इंजीनियर उम्मीदवार तुर्किया के टेक्नोलॉजी के सफर के मुस्तकबिल को आज ही रकम कर रहे हैं। एसटीएम की जानब से मुनक्किदा वर्ल्ड ड्रोन कप मैंने हम एफपीवी चश्मा पहनकर पायलट की नजर से परवाज का तजिया किया। रोबो लीग में हमने नौजवानों के अपने डिजाइन करदा रोबोट्स का करीब से मुशाहदा किया। इनके तरक्याती किस्से सुने हैं। एसएसपी के तौर पर हम अपने नौजवानों के हमराह हैं। दिफाई सनत की सबसे बड़ी ताकत इनकी सोच और इनके दिल की चाहत है। अर्जेंटीना अपने बिरूनी कर्जों को कम करने के लिए गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम की तरफ रुजू कर रहा है। अर्जेंटीन की हुकूमत का मकसद गैर मुल्की करेंसी कमी को दूर करने के लिए दौलतमंद गैर मुल्की सरमाकारों से फंड्स इकट्ठा करना है। वज़ीर इक़्तिसादियात लुइस कैपोतो ने गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम का ऐलान किया, जिसमें $350,000 की शराकत या सरकारी बॉन्ड्स में $800,000 की सरमायाकारी की बदले शहरीत की पेशकश की गई है। चार अफराद पर मुश्तमिल खानदान के लिए रकम $500,000 तक पहुंच जाएगी। हुकाम का अंदाजा है यह प्रोग्राम $2.5 बिलियन तक कमा सकता है। अर्जेंटीना पर 2027 में तकरीबन $25 बिलियन का बैरूनी कर्ज वाजिब अदा है। कैपोतो ने कहा अर्जेंटीन का पासपोर्ट बहुत कीमती है। इसके साथ ही तुर्किया से खबरें खत्म हुई।

हिप्पोक्रेट ने इसे इस्तेमाल किया। इब्न सीना ने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा और बहुत से लोग आज भी इस टीकाकार का सहारा लेते हैं। कफ थेरेपी 4000 साल पुराना शफायाबी का तरीकाकार है, लेकिन कोई इसे अनाड़ी करता है तो भी शफायाबी के बजाय आपको सेहत के संगीन मसाइल दरपेश हो सकते हैं। आइए मिलकर सीखते हैं कि किन चीजों पर ध्यान देना है और इसे कैसे करना है। हालिया वर्षों में लोग अपनी सेहत को सहारा देने के लिए मुख्तलिफ तरीकों की तरफ तेज से रुजू कर रहे हैं। इस जस्तजू के हिस्से के तौर पर रवायती तकमीली तिब्बी अमल दरामद हर गुजरते दिन मजीद तवज्जो हासिल कर रहे हैं। एकोपंक्चर और योंग थेरेपी से लेकर आरोमा थेरेपी और जोन थेरेपी तक वसी तरीकाकार का इहाता करने वाला रवायती तकमीली तिब्बी अमल न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि जहनी मजबूती जिंदगी के तवाजन के लिए भी हल पेश कर सकता है। इन तरीकों में से एक कपिंग थेरेपी है। ये मश जो हाल ही में दोबारा मंजरेआम पर आई है आज बारीक बिनी से जांची जा रही है। आज हम हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के इमरानिया ट्रेनिंग एंड रिसर्च अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान एरसोए की तरफ से इस मौजू पर टीआरटी खबर को फराहम करता मालूमात आप तक पहुँचा रहे हैं। कपिंग थेरेपी जिसे अवाम में हजामा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी तारीख तकरीबन 4000 साल कदीम है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एरसोए इस तवील रवायत की वजाहत इस तरह करते हैं। इल्मे तिब के बाप दादा हिप्पोक्रेट और कदीम रोमन मालिज केलन ने अपने तरीकों में हजामा का वसीब मन पर इस्तेमाल किया।